0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अलहमद इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम लतीर योशमार कलूना तालीम पर मैदान की खुल खिदमत तबसर कवि नकाम बची खुल बची गणी दौर हाजिर तालीम और कबुल सरासरा और माशुमानों के इखलाकी किरदार साजे बांधे हम खुसूसी तवज्जो साथी कमचे तालीम पर मैदान के और बटाग्राम के लतीर उद्रव कालूना टॉप पोजिशन होल्डर इदारा दा अलहमद इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल पटाग्राम जमुन खसूसियात दौरे जदीद तालीम वर्कवल माशुमानों की इस्लामी अकदार रावस्तल जो सफा सुथरा और तालीमी माहौल वर्कवन के इदारा द स्कूल फुल ट्रांसपोर्ट और द सिक्योरिटी बेहतरीन इंतजाम कंप्यूटर लैब और द लोबो खपल मैदान खुमश्ता नुदखपल औलाद मुस्तकबिल रोखा नकड़े मुंगसरा द प्ले ग्रुप नवाला तर नाइन्थ क्लास पूरी द तुलबो तालिबात पर महदूद सीटों बांधे दाखिली शुरू दी नुपता याद साते अलहम इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल निस्त वाबडा ऑफिस गेरवली बाजार बटाग्राम मजीद द मालूमात दपारा द टेलीफोन शमेरा दा 0997-310-444 मोबाइल नंबर दे 0345-94-72-137।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर
5: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अलहम्द इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम लतीर उलोशमार कलूना तालीम पर मैदान की खुल खिदमत तबसर कभी नकाम बची खुल बची गणी दौर हाजिर तालीम और कवल सरा सरा और माशुमानों के इखलाकी किरदार साजे बांधे हम खुसूसी तवज्जो साथी कमचे तालीम पर मैदान के और बटाग्राम के दतीर उद्रव कालूना टॉप पोजिशन होल्डर इदारा दा अलहम्द इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम जमुन खुसूसियात द दौर जदीद तालीम वर कवल और माशुमानों के इस्लामी अकदार रावस्तल जो सफा सुथरा और तालीमी माहौल वर्कउन के इदारा द स्कूल फुल ट्रांसपोर्ट और द सिक्योरिटी बेहतरीन इंतजाम कंप्यूटर लैब और द लोबो खपल मैदान खुमश्ता नो दखपल औलाद मुस्तकबिल रोखा नकड़े मुंगसरा द प्ले ग्रुप नवाला तर नाइन्थ क्लास पूरी द तुलबो तालिबात प महदूद सीटों बांधे दाखिले शुरू दी नो पता याद साथ अलहम इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल निस्त वावडा ऑफिस गेरवली बाजार बटाग्राम मजीद द मालूमात दपारा द टेलीफोन शमेरा दा 0997310444 मोबाइल नंबर दी 0345 94 72 1

0: हाय जी, बिल्कुल आवाज क्लियर भी ना, अलग ड्राई फ्रूट और सरसों और सरसों खुरमा आवाज क्लियर भी ना। मैं बिल में से जगह अस्सलाम वालेकुम ताज भाई सिंह गई खैर दी अज सारा बच्चे प्रोग्राम ना सारा डेरे से तमन ना बिल में से जगह दी ये ताज जी मैंने प्रोग्राम आओ रमा इनन प्रोग्राम आओ रमा मा विनर चिकम दिया करा वाला था तवे मा महा तक और मा ता खा ता विनर रा वाला मा दासे के देशी ना जी ना जो खुदा पालसी ने चेंज कम करना कम विनर रजे बसा का विनर हम विदाई आई द सुरुन दी औ सो खुइन दी ताज भाई मा तो वे कना नो मख्तस तरीके खिले दा समरे रुन दी दा डबल गए तीन बगे जमा के पांच सर मल्टीप्लाई के खुइन दे बगे जमा के कम जवाब राशि मा तो हुए याद द जवाब जिस उम्र दी खान एनी वे जना परवा के उडम बी काल तरफ तो जुगुरु सर परवा के उडम बने काल सुख देव द कम जना दी अस्सलाम वालेकुम जनाब ये सुख खबर के कम जना खोर के परवा के तहर के सलाम शे बखैर आले दर दवायो खैर खैर दे प्रोग्राम में शुरू ना हो रे कुछ दी रेडियो ऑन कर दे कुछ दी रेडियो ऑन कर दे गेम में देखो पोशी हुई है क्या ना गेम में नहीं है पोशी हुई
1: पोशी
0: गेम में पोशी हुई है सही था पटीम जबर की राजी के बजेर के

0: बिल्कुल जी दाऊ सर बाज मामद साहब आज हम तेपरों के काल को डेरे से तो मनने को तासुम कॉल्स को बोलिश हैं बस सिफर 309-711-88-99 गेम दी नंबर नामा नंबर नामे के तासुम सर बिल्कुल शिकत को बोलिश सीने कॉल दिला रहे हम इसे मिस दिला रहे हम बिल्कुल तरह से गुरु सर बिल्कुल को उनके सोग दिया उदय कमजर ने दी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जिनाबी अली सुख रकम से ना
1: मोहम्मद उस्मान दीपागुड़ेरा
0: मोहम्मद उस्मान प्रोग्राम के तहत हर कला स्थल हमेशा बखैर आले भाई हो
1: जी
0: मोहम्मद उस्मान तो खे जब बिल्कुल ठीक ठाक है मोहम्मद उस्मान तो कोई मिनवाल को जबर पंच दी दाख पलवा है तो खे के
1: ना
0: बपेल असल कॉल कर दी के ना मक दे रेडियो तो कॉल कर दे यो असल निकल दे गेम शो था कहना आज देखे हो
1: गेम शो था
0: गेम शो था वाजिब और गेम शो उन्होंने चिकन मदा आसान था ग्रान था
1: बराबर रहा
0: हाँ बराबर रहा
1: हाँ
0: जब तक बोलेगी खान तो ऊपर टीम जबर की राजी कहना
1: आओ जी
0: सही था आसान भी कुछ रेडी का गेम में तो पोशे भी कहना कि दोबारा वे दिपो कम
1: पोशे माँ
0: हाँ पोशे भी मर दासी कस लेगी मर चिदार की पयो उजल मनी पुई की कहना यो सड़े पकार दे खुद कर सड़े पकार दे आजान बिल्कुल रेडी के खान से जिकले में गो न गो उजल बता स्टार्ट डाले सही था
1: हाँ
0: हाँ जी 3-2-1 स्टार्ट
1: उन्नी पागुड़े 18 चक्रव्रम 17 अजमेरा 16 कनी 15
0: हाय कैसे बोले अडेर मन ने कहो उस्मान तकरीबन तासो 16 पूरे रागल चार आठ आठ पॉइंट तासो मिला शिविर डेरे से तो मन ने को खुशहाल रहते हो भाई अल्लाह हाफिज बिल्कुल जनाब उस्मान आठ पॉइंट से रागल ही टीम जबर लफा के ना एनी वजह ना बिल्कुल तरफ से गुरुंग सर बिल्कुल को उनके सोक दिया उधर कम जेने दीजिए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अजमा बख्याल दूसरा सिग्नल मसले के ही दगेरे वजह ना

बिल्कुल जी सर, कम मैसेजेस दी, कम कॉल्स दी। बिल्कुल जी ना, आवाज जमा क्लियर दिखे ना रेडियो बंदे, मतलब कन्फर्म के जमा क्लियर वही ना। इन वजह ना मैसेज जगह इधर दादा प्रोग्राम पर खजुड़ो। सलाम वालेकुम ताज मामो सिंह गई अखो ये सॉन्ग प्ले के ना दादा खूबों दुनिया लग रंगी ना खदा। और प्लीज प्लीज आई एम रिया अखबल खजी रिया जो कुछ प्ले कम दादा सही दम आओ बल मैसेज लगा ले दी खजी देर से मन न कहूँ खुशहाल रहता हूँ सही ना। बल मैसेज जगह भाई खजी डेरे मन न कहो रो भी खुशहाल रहता हूँ सैम। बल मैसेज लगा ले दे हल्क हमारा तो गोरा खजी बिल्कुल दस काल के बोले शेखा देखिए तो पता लगी

वी 45 वाया उस टिक दे लेकिन देखो इन्हें दी जमा कड़ी का ना तदिया मुताबिक मासर दार अजी ची खोर निश्चत दे और उन्हें चुकुम दिया गा दे द्रे उस रात तो वाया सही दी गलत में मिल दे तस्वीर गलत थे सिंगा गलत है तसुस्मा तो ओरिजिनल जवाब वो भी आता था जवाई मच ओरिजिनल जवाब तसु सर सो दे जर तभी आवाई मच तसु वेदा 66 गलत थे क्या ना जर तो कंफर्म कुम सही था तसुमा तो ओरिजिनल जवाब हुए जिसे हिसाब देखा और भाई मत अच्छा सलाम को वालेकुम सलाम अजमा सलाम जिदा को हम कबूल के सारा दे प्रोग्राम नहीं मैम सारा डेरा मंद ना भले मैं से जागली मामू आई एम सानिया और मायरा जो साइलेंट है मामू मेहमान आए हुए ठीक है सानिया रेरा मनना अतासु वे ची द्रे खुंदी द्रे रुन नो तासु ची मतलब द्रे रुन दी कंदा डबल किदा बसुशी ची बेश सिंपल खबर तासु सुकुम सही द चेशवल ची के तासु तीन जम के सोशल ची और तीन नो नो ले चितासु पंच सर रिजर्व के नो पंच 45 45 के चितासु तीन खुंद जम के नो 48 राजी खुदा चित जन्नत तबूजा तस को टोटल स्कोर चकम 48 राजी सही द तमा द टोटल स्कोर 66 खेले दे नो मास गज गलत राजी कना एनी वजन अबल मैसेज जागले दे ताज लाला सार बसासु प्रोग्राम वी 10-11 बजे पूरे प्रोग्राम उस रवान दे हिमाल सम खूब राजी हुई अब एगाश पे में खजी खान दस हो है इजा हने नूरी महने नूर खडी रमन ना जगुर बंदा जी देखा बिल में से जगह यस तीन भाई देखो सिर्फ बस ना सिर्फ बस सिर्फ जमा कबूल दी एडकूल नहीं दी सिर्फ जमा कूल दी तो खोइन दादा सिर्फ जमा कूल दी सही दम कदवा खोइन दी विनु द्वा कदरे खोइन दी नुद्रे शब्द अगर दरेगा संदा सोली गाल न कोई मना टाइम शार्ट देखने जरूर चलेगा ग्यारह बजकर 42 मिनट पूरे कदरे वड़े कसन काल को उलिशी खाम हमें तो खुरे कई उदा का नंगे माह दिद्रे वाले शाबस समझे उस पहुंच लेमा खजी खाम शुक्र दीजिए उस पहुंच वाई हो सुखी साहब बल चाकूर मंदी साहब के रहमत हो वाई कल नहीं मिला भी किस समझ जाता हूँ